0: कोकोनट सोकोनट वीटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी बिहान

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड

0: सरलाई गीता हेर्न पाइन्छ
1: मोर्छ नि बारिस के
2: हल्कै गएस
1: उज्जा मुर्दा
3: हल्का

0: अन्तर्गत गोर्खा पब्लिक हस्पिटल प्रणाली घोराईदान बिरामी भए गोर्खा हस्पिटल दाम फोन नम्बर टिप्नुहोस् 082-563-414।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओख।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराई दांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने दो मालिक, सबका भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?